0: गुड न्यूज एफएम 105.1
1: विश्वास सुनैबाट आउँछ। गुड न्यूज एफएम रेडियो 105.1 मेगाहर्ज।

हाम्रो मुस्लिम भाषा प्रभु जगतको, हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु जगत।